न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा। रहने दे।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: तेरा नाम जगदीप हीरा फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल।
1: लिसनर्स चॉइस ब्रॉट टू यू बाय कलर्स टीवी।
2: हेलो यूके वालों, बिग बॉस इज बैक और इस बार घर वालों को मिलेगा एक नहीं टू चांस, बिग बॉस ओनली ऑन कलर्स।
3: वॉच बिग बॉस 20 टुनाइट एट 9:30 PM ओनली ऑन कलर्स टीवी एंड जियो हॉटस्टार।
0: स्ट्रेट इनटू आवर हिट ऑफ द आवर।
4: The hit of the hour on Sunrise Radio brought to you by Southall Travel. From beach getaways to city breaks, discover worldwide deals today at southalltravel.co.uk.

Bam. Bam. Yeah. भाई तेरा बस लिखत गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बज लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today.
1: ZTV HD par Sarigama Pa mein टॉप 13 कंटेस्टेंट्स के शानदार सुरों का सफर और साथ होंगे गेस्ट जज शान।
2: ये तो शुभारंभ है, अंजाम क्या होगा अगर आगाज इस तरह का हुआ है।
1: एयर इंडिया सारे गामा पा प्रेजेंटेड बाय साउथ हॉल ट्रैवल आज शाम 7:30 बजे जी टीवी HD पर अवेलेबल ऑन स्काई 707, स्काई ग्लास 714, वर्जिन मीडिया 809, BT 394 एंड Z5 ऐप।
3: See Karan Ojna live. Hakna pade tu meri when he brings his P-Pop Culture Tour to Birmingham, London and Manchester this October with special guest Icky. Final tickets on sale at livenation.co.uk. Karan Ojna live.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे Grand.
0: आज भी जलसा कल भी जलसा हर मौके पे जलसा ही जलसा घुघरा मठिया खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं मिठाई और फरसान के बाद शॉर्ट जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज 28 वॉटफर्ड रोड वेम्बली ओपन ट्यूजडे टू संडे
5: This month, Mera Boiler is offering a pre-booking sale with a £350 discount on all Bosch boilers. Get a fully fitted 25-kilowatt Bosch boiler for just £1,875. Complete with a 7-year guarantee. Call 020-8150-2025 or visit meraboiler.com now. T's and C's apply. Layla.

0: This is Sunrise Nightlife.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.